0: जीरो सिक्स वान फोर फाइव वान डबल जीरो टू मोबाइल नम्बर 9856084666
1: द गेम्स कलेज फर एम्पावरिङ द फ्युचर।

0: लगन को साइत निकलेर जाला, बारी को भत्तेर भान्से लेखाला है।
1: ए बजान है।